0: दफ्तरों तक पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को
2: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

0: और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ-साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर 5वां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रमर प्रथम कंठशिल्पी नवकिशोर महत्तम, गीतरचना स्वभावकवि गंगाधर मेहर।

0: ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ।
1: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माई गॉव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी संबलपुर जुहार आंचलिक खबर पढ़ुचन सुप्रीति मिश्र। श्रीक्षेत्र पुरी न द्वादशी तिथि न रथमानके आज राति महाप्रभुमानकर अधरपणा नीति करा रथ उपरे महाप्रभुमानकर मध्यान्ह धूप नीति सरला उत्रु अधरपणा नीति करा फि रथटी महाप्रभुमानकर लागि तीनटा लेखा पणा भोग तयार हेबा सर कदेल खीर्सा गोलमरीच कर्पूर आउ जयफुल बागी दरबथी सेवक माने इ पणा तयार करसन। महाप्रभुमानकर अधर उच्चार माटिर हाँडी पणा भोग लगाजाइकरी हाँडी भगाजाएसि। कुम्भारे नौटा अधर हाँडी तयार करिकरी फी बछर जुगे देसन। अधरपणा नीति लागि श्रीमंदिर प्रशासन राघव दास मठ आउ बड़ ओडिया मठ तर्फ सबु प्रकार प्रस्तुति शेष हेइछि। इ पणा भोग रथ पार्श्व देवादेवी अशरीर आउ चंडी चामुंडा उद्देश्य समर्पण करायसी। इ पणा पाइकरी से मुक्ति पाएसन विश्वास करायसी। सेन्ता आज श्रीमंदिर गरुड़ शयन नीति बिल करा गरुड़ स्तंभ आगाड़े शुद्ध सुआर पूजा करबार उत्रु पूजा सामंत गरुड़ महास्नान और बाकी नीति करबे। गलाकाल हरिशयन नीति होता बेले महाप्रभुमानकर पाखे शयन करबार लागि गरुड़ प्रार्थना करा। गलाकाल भक्त जबर भिड़के नजर ते रखिकी महाप्रभुमानकर सुनावेश के श्रीमंदिर प्रशासन तरफ आउ तीन घंटा अटका बढ़ा जाता। भक्त डेरी राति दुई बजे तक चतुर्धामूर्ति सुनावेश दर्शन करते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन 11 बजे आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरी देश दुनिया सारा लोकंकर संगे भाव दियानिया करबे। इटा तांकर 136 नंबर मन की बात कार्यक्रम हबा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन जरी आउ एआईआर न्यूज वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप थी प्रसारण करा जिबा। आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज पीएमओ ऑफिस सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल थी बिल इतार सीधा प्रसारण करा जिबा। प्रधानमंत्री हिंदी अभिभाषण उत्रु आंचलिक भाषाती इतार प्रसारण करा जिबा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उपरवेला आभासी जरिए विकसित भाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतियोगी संगे भाव विनिमय करबे। कार्यक्रम थी सब् राज्य केन्द्रशासित इलाकार 400 जन जवान प्रतियोगी प्रतिनिधित्व करिकरी प्रधानमंत्री संगे आलोचना करबे। विकसित भाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम गलामास 4 तारीख नु 30 तारीख तक लद्दाख हिमाचल प्रदेश आउ उत्तराखंड 74 गांव के नेकरी हेथिला। केन्द्रमंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय अतिरिक्त दायित्व दीजिए। श्री जोशी इतार आगनु खाउटी व्यापार खाद्य और सार्वजनिक बंटन आउ नुआ आउ नवीकरणीय शक्ति मंत्रालय दायित्व थी अछन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मेन्द्र प्रधान इस्तफा के ग्रहण कला उत्रु निष्पत्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आवाकाल सकाल 8 बजे नु यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर थिबा आघर सरकारी प्राथमिक विद्यालय साधारण लोकंकर भिन भिन अभियोगर शुणाणी करबे। एथिलागि पंजीकरण करथिबा आग्रही लोके पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र व्यक्तिगत परिचय पत्र और निजर अभियोग पत्र संगे उपस्थित रहिकरी मुख्यमंत्री को निजर अभियोग जनै पारबे। आज हेउछे कारगिल विजय दिवस। 1999 मसीहा बेलके भारत पाकिस्तान सीमान 60 दिन तक चलिथिबा युद्ध ऑपरेशन विजय थी जितिकिरी भारतीय सेना बाहिनी आजिर दिने देश लागि गर्व आउ गौरव आनिथिले। जम्मू काश्मीर कारगिल सेक्टर न भारतीय सैनिक मानकर वीरता आर देशर सुरक्षा लागि जीवन देथिबा शहीद मानकु श्रद्धांजलि जनाबार लागि फी बछर जुलाई 26 तारीख कारगिल विजय दिवस पालन करा जाउछे। कारगिल विजय दिवस अवसर आज सारा देश शहीद जवान मानकु श्रद्धांजलि दिया जाइकरी खास कार्यक्रम मान आयोजन करा जाउछे। केन्द्र गृह और सहरांचल व्यापार मंत्रालय तरफ अमृत 2.0 योजना अधीन सहरांचल वर्षा पानी संरक्षण बंद कंटा मान पुनरुद्धार आउ स्थायी जल परिचालना क्षेत्र ते बहुटे पदक्षेप नियाजाउछे। पानी सुरक्षा के सुनिश्चित करबार आउ जलवायु परिवर्तन परिस्थितिर मुकाबला करबाटा कार्यक्रम मूल उद्देश्य आए। बलांगीर जिला पटनागढ़ ब्लक तमिया पंचायत न उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव 130 कोटी टंका खर्च तैयार मिनी स्टेडियम उद्घाटन करिछन। श्री सिंहदेव कहिछन ई पदक्षेप स्थानीय जुआन पीढ़ीमान भितरे खेल मनोभाव और सुस्थ जीवनशैली के प्रोत्साहन देबा। आवा पीढ़ी के नुआ लक्ष्य स्थिर करबार लगी भी इटा प्रेरणा जोगाबा। इतार उत्रु उपमुख्यमंत्री भैंसा ठाने आउ गोटे नुआ स्टेडियम उद्घाटन करिछन। पाणीपाग उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आउ ताके लागिकरी पश्चिमबंग ओडिशा समुद्र खणीन आज गोटे लघुचाप क्षेत्र होइजे। इतार प्रभावती राइजे भिन भिन जगान वर्षा लागि रहिजे। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आबा 24 घंटा भितर जबरनु अति जबर वर्षा हेबा बोली

0: ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହିତ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାକେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ସକାଳର 6 ବଜେ ତକ 612.56 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟତି ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ 12ଟା ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ଫି ସେକେଣ୍ଡଟି 1,09,229 ଘନଫୁଟ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ବେଳେ 1,57,070 ଘନଫୁଟ ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକେ ଆସୁଛି। ଏଚ୍ଡି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆରବେଲର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 7:02। ଜୁହାର।
1: मन की बात प्रधानमंत्री रेडियो पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से करेंगे मन की बात। आकाशवाणी के सभी केंद्र इसे प्रसारित करेंगे।
2: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है। आपकी बातें सुनता हूँ, आपके लिए सोचता हूँ, आपके सुझाव देखता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। बोलता मैं हूं, लेकिन बात आपकी होती है।
3: याद रखिएगा, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विथ फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया रोमानिया देशानां आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायां अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि, तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिक यात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्र यात्रावधौ राष्ट्रपति पदासीना मुर्मुः विभिन्न देशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताः अकरोत्। व्यापार मञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीय प्रवासी समुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतद् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभा कार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे परीक्षासु च

0: दूरदर्शनस्य सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमंत्री कार्यालयः, सूचना प्रसारण मंत्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं सार्धचतुर्वादने दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 26,000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। विंशति प्रतिविंशतेः पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन त्रिस्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: श्रोतामाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु। वर्तमान शुणन्तु आजि प्रसारित होबाकु थिबा केतेक कार्यक्रम संपर्क सूचना।

0: ଚିତ୍ର ମାଧୁରୀ ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
4: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
6: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
5: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
6: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
5: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
7: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
5: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं।
8: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं।
5: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
9: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
8: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे।

0: उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPay के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPay ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPay ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जांच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नवभारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। चौथे साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1. To clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championship. Women's team bags silver medal. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh held a third round of discussion with the CJP delegation yesterday, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Addressing a joint press conference with CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
6: जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है. कंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम.
5: On the five-point charter given by the CJP for reforms in examinations, Mr. Nadda said that the government will deeply think about the charter and will do whatever is possible after holding deliberations with the CJP. CJP's chief spokesperson, Saurav Das, announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
7: The Kongrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines.
8: So, we have immediate effect se protesters se request karte hain ki aap withdraw kare, peacefully apne ghar wapis jaye.
5: Union Minister Prahlad Joshi will be the new Education Minister following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi has been assigned the charge of the Ministry of Education in addition to his existing portfolio. Mr. Joshi is currently serving as the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and New and Renewable Energy. Talking to media after the announcement, Mr. Joshi said he will try his best to meet the expectations from him.
9: Thank Honorable Prime Minister for giving such a huge responsibility, and with a great trust he has assigned this responsibility to me. I can only say at this moment I will perform and I will try to come to his expectation in this particular department with full strength. I will try to work with all humility and honesty.
5: President Draupadi Murmu has accepted the resignation of Dharmendra Pradhan from the Union Council of Ministers with immediate effect. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha tomorrow. The bill is listed in the business of the House for Monday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It'll be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app.

0: हेलो अनुरोध आपण मानको मन पसंद कथाचित्र गीतर कार्यक्रम हेलो अनुरोध
1: हेलो
2: जय जगन्नाथ नमस्कार
1: जुहार कोठो कहते नमस्कार हेलो अनुरोध कार्यक्रम को स्वागत
2: धन्यवाद
1: अच्छा प्रथम कहतु आज कौ गीत शुणा
2: मत चांदनी फिल्म छाड़िए
1: मैंने वर्षा उपरे गीत मैंने पाग उपरे गीत नहीं कि तो आपण मैंने पटे बहुत वर्षा होची ताले आम पटे भी होची कल राति बहुत जोर रे वर्षा होतला अच्छा आ आज्ञा आपण कोन करंती
2: मो तो आइसक्रीम बिक्री करे वर्तमान तो मोर वर्षा सीजन में आइसक्रीम बंद होछ
1: हां एबे ताले धंधा मंदा नहीं कि
2: आज्ञा
1: एबे कोन करचंती
2: ଆକାଶବାଣୀ
1: ଶ୍ରୋତା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो। हाँ, आ गया। कौन?
1: पामरा के सुपा ने देवेंद्र साहब कौन थे? हेलो
0: आज्ञा, टिके जोर रे कहबे, आपणकर आवाजटा कम शुभुचे। हाँ आज्ञा, कहुन।
1: पामरा के सुपा ने देवेंद्र साहब कौन थे? इनका
0: आज्ञा आज्ञा, कहुन, केन गीतटा सुनमा?
1: क्या कसूर हो?
0: अच्छा, दिल का क्या कसूर है रो, दिल नजर क्या है, ये गीतटा सुनमा? अच्छा आज्ञा, कण करसन आपण? चाषबास करसन? काय चाष? ধান চাষ করছেন? আর ধান বদলা? আচ্ছা আচ্ছা, আও কেনতা আপনকর হালচাল কেনতা? আও ঘরে কি কি অছন?
1: ঘরে মা বাপা
0: হুম হুম
1: দুইটা পুয়া
0: হুম হুম হুম কেতে কেতে বরস হচ্ছে আপনকর পুয়া মানকু?
1: পাঁচ বরস।
0: আচ্ছা আচ্ছা, বেলে বড়টা ভাল পাঠ পুটি পড়ুছে তো? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଗୀତଟା ଶୁନ୍ମା ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛେ, ନମସ୍କାର।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, आपको हमारे इस हेलो अनुरोध कार्यक्रम में स्वागत है।
1: ठीक है सर, आप भी इसमें मैं भी अच्छा हूँ। लाइव में फोन करके मेरा फोन लगा है और दिसंबर के मनोरंजन साहब जल्दी से पसंद गीत बुलाता हूँ। फिल्म का नाम है आमने सामने और गीत की बोले तू मैं बन गया मैं तू बन गया। गाय किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती जी का फिल्म गाना सबसे पहले गीत आपको के निर्देश साहब को पूरे भारत का आकाशवाणी समलपुर उड़ीसा में सभी लोगों को आपके परिवारजन को रिश्तेदारों को आपके दोस्तों को सभी उद्घोषक वायु स्टाफ कर्मचारियों को हेलो कर रेडियो फ्रेंड ग्रुप के श्रोताओं को पूरे भारत का श्रोताओं को उड़ीसा में सभी श्रोताओं को भी ट्रीट करो मैडम फोसाम जी सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद। आप क्या करते हैं?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, सौ फुस्तों कॉन्फ्रेंस में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी ग्रेड में कई केंद्रों में सर फोन करता हूँ, ईमेल में लाइव में और प्रसारण भी सुनता हूँ सर। दो मोबाइल है मेरे पास, छोटा मोटा छोटा भी ये बड़ा वाला मैं बात करता हूँ, छोटा वाला में प्रसारण सुनता हूँ, कभी कभी बड़ा वाला में भी सुनता हूँ।
0: जी, तो ये आप ऐप में सुन रहे होंगे?
1: हाँ सर, ऐप के माध्यम से सुनता हूँ सर।
0: जी, आपको उड़िया थोड़ा बहुत समझ में आता है?
1: हाँ सर, समझ में आ जाता है सर, बोल नहीं सकता हूँ लेकिन समझ में आ जाता है सर।
0: अच्छा, सही बात है। तो आपकी तरफ मौसम कैसा है?
1: मौसम सर एकदम अभी धूप किया है, बादल भी है और इसके बाद थोड़ा देर बाद धूप कम हो जाएगा फिर बादल आ जाएगा, इस टाइप का मौसम चल रहा है
0: जो
1: सर।
0: तो सुहाना मौसम है। हेलो हेलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि सुहाना मौसम है
1: जी सर, सुहाना मौसम सर।
0: जी। और इस बार बारिश कैसा हुआ है?
1: बारिश सर वो अभी सही ढंग का नहीं हुआ है सर,
0: जी
1: जैसे
0: जी
1: होना चाहिए उस टाइम को नहीं हुआ है,
0: जी
1: रुक
0: जी
1: रुक के गिर रहा है पानी सर। कभी 2 दिन कभी 1 दिन आता है पानी तो झा जा जाता है, फिर 4 दिन 5 दिन तक एकदम सूखा हो जाता है। मौसम इस टाइप का चल रहा है।
0: जी और आपका हाल चाल कैसा है?
1: ठीक है सर, ठीक है, आप भी अच्छे हैं सर, मैं भी अच्छा हूँ और
0: जी
1: कार्यक्रम जुड़े हैं सर, आप सुनते हैं अपने पसंद के गीत सुन लीजिए।
0: जी जी
1: धन्यवाद सर।
0: ठीक है, सुनते हैं। धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, आगे
1: हाँ
0: नमस्कार।
1: भाई, हाँ मुझे संतन मंडा हो गया, हरिओम नगर नवीन कला संबलपुर। धन्यवाद।
0: आज्ञा आज्ञा, आपण को आमर कार्यक्रम के स्वागत। आज्ञा, पहला केन गीतटा सुनमा कहूँ तो?
1: अरे दो बदल लो, आ गई उनकी याद
0: अच्छा
1: वो
0: अच्छा
1: नहीं आई।
0: हो, ठीक अच्छे आज्ञा, आपण को गीतटा सुनमा। आओ केन्ता अछन आज्ञा?
1: हाँ बहुत अच्छे रथ,
0: आओ गोविंद तलारे रथ केन्ता हैला?
1: आमर ये गोविंद तो बढ़िया है।
0: भल हैला। अच्छा, आओ आज्ञा,
1: ले
0: आपण
1: ले
0: काणा करसन?
1: सारा बिहन कीटनाशक औषध दुकान।
0: अच्छा, आओ आज्ञा, बहुत दिन परे फोन कले।
1: फोन तो आपको लगे बहुत श्रोता है गले ना,
0: आज्ञा आज्ञा,
1: ओडिशा समलपुर बाहर, ओडिशा हाँ ओडिशा बाहर भी था उसे।
0: ओडिशा बाहर, आज का तो गुजरात नो छत्तीसगढ़ नो फोन आइसला।
1: हाँ बोल है।
0: हाँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा आपन को स्वागत आमरी हेलो अनुरोध कार्यक्रम के नमस्कार। अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आपनकर मन पसंद गीत सुनमा आज तेरे बिन साजन लगे ना। अच्छा आपन काण करसन आज्ञा। अच्छा अच्छा आओ आपनकर हाल चाल केनता। हाँ हाँ आमर नई बहुत माने गिड़ गिड़ चढ़ चढ़ होकर वर्षा आई। हाँ मुई तो छाड़वा कि नहीं बोलती जेन प्रकार बरसुला जे। आपनकर हाल चाल केनता काम धंधा नहीं करी केनाडा बाहर आड़े जायसन बैल काम धंधा नहीं करी केन के बाहर आड़े जायसन कहें बोल छे। अच्छा बोले बरगढ़ रे ही आपनकर काम अच्छे। अच्छा आओ इथरा धनुयात्रा केनता डाकबे आपको। ठीक अच्छे कुनवा करबे बोले जिमू। आओ हाउ अच्छा अच्छा हाउ ठीक अच्छे ताहले इथरो आमे जिमू। आओ हाउ ठीक अच्छे आज्ञा ताहले आपनकर ई गीतटा सुनमा। आज्ञा आज्ञा जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक अच्छे धन्यवाद आपण मते भी डेडिकेट कर दिले और आपणकर जेने रेडियो श्रोता मंडली अच्छे आपण मते सेथिर गुटे मेंबर। आज्ञा आज्ञा हाउ ठीक अच्छे ताहले आसन सुनमाई गीतटा।
1: ठीक है
0: आज्ञा आज्ञा नमस्कार।

0: Ja.
1: हेलो
2: हेलो हेलो नमस्कार
1: आज्ञा नमस्कार अमर कार्यक्रम के आपन को स्वागत
2: अच्छा
1: केन गीता सुनमा कहुन त पहला
2: आज गुटे बर्षा रे फिल्म दे जाना गुटे बर्षा हो दुआ गीत अछि बहुत
1: अच्छा अच्छा हो ठीक अछि मोर ऊपर यदि छाड़ ले
2: गुटे पसंद रे आपन घर जेंटा भल लागबा
1: अच्छा बेताब फिल्म रो गुटे गीत टे सुनमा बादलियों गर्जा है
2: हां चलेगा सर
1: अच्छा ठीक अछि आज्ञा आपन काने करसन
2: एटा कपड़ा बना बने जे आज्ञा का करबे आज रविवार दिन ता बोले बाजार के जिगर मोला फोन कर छी ता
1: अच्छा अच्छा
2: बोले आज का करबे आज बरसात तो रात 11 टा रु हो गी कि बोल तो बरसात नहीं छड़वार दे बाजार के जिगर जेनि ग्रीन हैला आ कपड़ा भी दिखि गई नहीं हैला
1: अच्छा अच्छा आओ आज्ञा केतरा कपड़ा बुनसन माने केते दिन लागसी गुटे साड़ी बुनवार लगे
2: गुटे साड़ी बोला त 2 दिन ही तीन लाग जाएगा
1: अच्छा अच्छा हो ठीक अच्छे आज्ञा आपन होचन हमर शेष कॉलर
2: ताले
1: सुनमा आसुन इ गीतटा
2: ठीक अच्छे आज्ञा नमस्कार
1: नमस्कार आज्ञा नमस्कार।

0: ଏଥିସହିତ ଶେଷ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବୈଷ୍ଣବୀ। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपाय

0: परले के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री प्रह्लाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुल गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। समग्र राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफल और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। भारत के युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु मूल करुछु ओडिया सिनेमार गीत सबुनु पहले भाय भाउजर सिनेमार ई गीतटा सुनमा। गीत के गाइछन अतीश मजुमदार, सिकंदर आलम आउ निर्मला मिश्र। गीत के लेखिछन नारायण प्रसाद सिंह। संगीत निर्देशना बालकृष्ण दास।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से।

0: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में

हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है। जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैड

बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी
और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया, दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया, अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल
फिर से

बसेरा बना रहा है। ये गिर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये
यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं। इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो

0: दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ବିଶାଲ ଶର୍ମା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय की यही कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
2: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
2: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेरी।

0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को सुझाव दिया है कि वे काला सागर से गुजरने वाले जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन कर लें। परामर्श में कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपण माने कार्यक्रम शुणुचंते आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररो आरंभ करछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम। प्रथम शुणन्तु एही गीतटी गायछंती सुरेन्द्र कुमार मिश्र, गीत रचना अरक्षित धरुआ।

0: which began in Glasgow a few days ago.
1: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है. यह एक ऐतिहासिक जीत है. हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है. लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था. अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है.
0: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए. इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा. फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की. पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है. केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता. यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है. बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते. इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है. वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए. मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है. यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है.
0: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें. आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा.
0: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom craft and further strengthen the spirit of being local for vocal for local.
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है. ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं. आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें. आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें.
0: The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी. बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है. पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है. बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है. मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें.
0: Tomorrow, the 27th of July, marks the death anniversary of Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. Mr. Modi said Dr. Kalam's personality embodied many inspiring facets, yet the role of a teacher was closest to his heart. Concluding his address, Mr. Modi spoke about Independence Day, which will be celebrated on the 15th of August. He urged all to share their myriad ideas and suggestions before the 15th of August, as always, on MyGov. Kargil Vijay Diwas is being observed today across the country to honour the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, and

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है
1: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां कठिन मौसम दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है
1: रक्षा उत्पादन हो रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है इसके तहत बारिश के पानी के संचयन ग्राउंड वाटर रिचार्ज पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है यह एक ऐतिहासिक जीत है लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें उनकी पूजा करें आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च

0: बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था, जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है।

कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ହ୍ୟାଲୋ
1: ହ୍ୟାଲୋ
0: ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କେନୁ କହୁଥିଲେ?
1: ହ୍ୟାଲୋ
0: ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
1: ହ୍ୟାଲୋ
0: ହଁ ହଁ କହୁନ ଆଜ୍ଞା।
1: ଆଜି ମେ କଚ୍ଛ ଗୁଜରାଟ ସେ ବାତ କର ରହା ହୁଁ।
0: ଆଚ୍ଛା, କଚ୍ଛ ସେ ବାତ କର ରହେ ହୈଁ
1: ଜି।
0: ଇତନେ ଦୂର ସେ?
1: ଜି ବିଲକୁଲ। ଔର ଆପକା ସମ୍ବଲପୁର ଜୋ କେନ୍ଦ୍ର ହେ ଓ ହମ ସୁନତେ ହୈ ସର।
0: ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୋ କିସ ପେ ସୁନତେ ହୈ ଆପ?
1: ଜି ହମ ଏସେ ଓ ଜୋ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଅପନା ଜୋ ହୈ ନା
0: ऐप के माध्यम से?
1: हाँ जी, ऐप के माध्यम से। और
0: अच्छा, जी
1: आपकी
0: जी जी
1: जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं उड़िया भाषा जान सकता हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका नाम और एक बार बोलेंगे?
1: मेरा नाम है विभव रबारी।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: जो अपना उड़ीसा में गौड़ो लोगों बोलते हैं उसको, उड़ीसा भाषा में जो बोलते हैं ना।
0: अच्छा, तो
1: उधर उड़ीसा में मैं उड़ीसा आदमी के साथ काम किया हूँ 20 साल।
0: अच्छा, कहाँ पे थे आप?
1: हम थे गांधीधाम में।
0: अच्छा,
1: तो अभी मैं अपने गांव में हूँ, कच्छ में, मतलब अपना गांव है उधर, अभी खेती बाड़ी करता हूँ।
0: तो
1: पहले मैं
0: मुझे लग रहा है आपको उड़िया बहुत पसंद है शायद।
1: जी,
0: अच्छा,
1: तो मैं उड़ीसा वाले आदमी के साथ काम किया हूँ, तो मैं उड़ीसा भाषा को जानता हूँ।
0: जी,
1: मतलब बोल नहीं सकता हूँ इतना परफेक्ट, लेकिन सुन अपना समझ जाता हूँ बिल्कुल।
0: जी, ठीक है।
1: तो आपका जो उड़ीसा के भाषा में जो कार्यक्रम आते हैं वो भी मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ जाते हैं, तो सुनने के लिए मजा आता है।
0: जी, बहुत खुशी हुई सुन के। तो पहले बोल दीजिए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हाँ, वो जो सरगम फिल्म है ना, उसका एक गाना है डपली वाले, वो एक
0: ओके,
1: गाना है।
0: ठीक है, ठीक है। तो सुनते हैं ये गीत को।
1: हाँ जी, तो मैं अपने जो ग्रुप में हम जो रेडियो श्रोता मित्र है उनका नाम ले सकता हूँ
0: जी
1: जी?
0: जी जरूर जरूर जरूर।
1: हाँ, तो हमारे जो गुजरात के जो आकाशवाणी के जो ग्रुप के मित्र है उनका नाम है धीरज भाई रबारी है, किरीट भाई है, और अपना मनोज भाई है, थोड़ू भाई गढ़वी है, और मनो अपना जो मनोज भाई है,
0: जी
1: और ये सब हम आकाशवाणी के जुड़े रहते हैं, और एक दूसरे के जो जो केंद्र के कार्यक्रम जो आते हैं उनको बात करते रहते हैं कि भाई आज मेरा फोन लगा था तो मैंने बात किया,
0: जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: ऐसा सब जो आकाशवाणी के जो माध्यम से बात होती है ना वो हम
0: जी
1: बात करते रहते हैं सर। तो
0: जी ठीक है। तो
1: ये उड़ी,
0: आप फोन करते रहिए, इतने दूर से जब फोन आता है तो हमें भी खुशी लगता है।
1: हाँ, और मैं तो ट्राई मारते थे लेकिन मुश्किल से लगा है, कब से मैं तो ऐसे ट्राई कर रहा
0: हाँ,
1: हूँ।
0: ये तो लॉटरी जैसा ही है।
1: जो जी,
0: ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आपका ये गाना।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो। हाँ आ गया। कौन?
1: बामरा कैसे पाने देवंद्र साहब कौन सुने।
0: आज्ञा टिके जोरे कहबे, आपणकर आवाजटा कम शुभुछे।
1: हेलो बामरा
0: हाँ आज्ञा कहुन।
1: कैसे पाने देवंद्र साहब कौन सुने।
0: आज्ञा आज्ञा कहुन, केन गीतटा सुनमा?
1: दिल का क्या कसूर हो।
0: अच्छा, दिल का क्या कसूर है रो, दिल नजर क्या है, ई गीतटा सुनमा? अच्छा आज्ञा, कण करसन आपण? चाषबास करसन? काय चाष? ধান চাষ করছেন? আর ধান বদলা? আচ্ছা আচ্ছা, আও কেনতা আপনকর হালচাল কেনতা? আও ঘরে কি কি অছন?
1: ঘরে মা বাপা
0: হুম হুম
1: দুইটা পো।
0: হুম হুম হুম কেতে কেতে বরস হচ্ছে আপনকর পুয়া মানকু? আচ্ছা আচ্ছা, বেলে বড়টা ভাল পাটপুটি পড়ুছে তো? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇ ଗୀତଟା ଶୁଣମା ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛେ, ନମସ୍କାର।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी, आपको हमारे इस हेलो अनुरोध कार्यक्रम में स्वागत है।
1: ठीक है सर, आप भी उसमें मैं भी अच्छा हूँ। लाइक क्या बोलते फोनिंग कार्यक्रम में मेरा फोन लगा है और समय पर मनोरंजन साहब जल्दी से पसंद गीत बुलाता हूँ। फिल्म का नाम है आमने सामने और गीत की बोली तू मैं बन गया मैं तू बन गया, गायक किशोर कुमार मिथुन चक्रवर्ती जी का फिल्म गाना। सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को पूरे भारत कार्यकर्ता को आकाशवाणी समलपुर उड़ीसा में जुड़े सभी लोगों को आपके प्रियोजन को जिसे गायक आपके दोस्तों को सभी उद्घोषक वायु स्टाफ कर्मचारियों को हेलो रेडियो ग्रुप के श्रोताओं को पूरे भारत श्रोताओं को उड़ीसा में जुड़े सभी श्रोताओं को भी ट्रीट करो मेरा फोन सामने के साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद। आप क्या करते हैं?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, सॉफ्ट इंस्टॉल कॉन्फ्रेंस में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ, नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में सर फोन करता हूँ, ईमेल में लाइव में और प्रसारण भी सुनता हूँ सर। दो मोबाइल है मेरे पास, छोटा मोटा छोटा भी ये बड़ा वाला मैं बात करता हूँ, छोटा वाला में प्रसारण सुनता हूँ, कभी कभी बड़ा वाला में भी सुनता हूँ।
0: जी, तो ये आप ऐप में सुन रहे होंगे।
1: हाँ सर, ऐप के माध्यम से सुनता हूँ सर।
0: जी, आपको उड़िया थोड़ा बहुत समझ में आता है?
1: हाँ सर, समझ में आ जाता है सर, बोल नहीं सकता हूँ लेकिन समझ में आ जाता है सर।
0: अच्छा, सही बात है। तो आपकी तरफ मौसम कैसा है?

0: एकदम अभी धूप किया है, फिर बादल भी है और इसके बाद थोड़ा देर बाद धूप कम हो जाएगा, फिर बादल आ जाएगा, इस टाइप का मौसम चल रहा है
1: जो तो सुहाना मौसम है।
0: जी।
1: हेलो हेलो,
0: जी सर,
1: तो मैं बोल रहा हूँ कि सुहाना मौसम है
0: जी सर, सुहाना मौसम है सर।
1: जी, और इस बार बारिश कैसा हुआ है?
0: बारिश सर अभी सही ढंग का नहीं हुआ है सर, जैसे
1: जी
0: होना चाहिए उस टाइम को नहीं हुआ है,
1: जी
0: रुक
1: जी
0: रुक के भी गया पानी सर, कभी 2 दिन कभी 1 दिन आता है पानी तो झा जा जाता है, फिर 4 दिन 5 दिन तक एकदम सूखा हो जाता है, मौसम इस टाइप का चल रहा है।
1: जी जी और आपका हाल चाल कैसा है?
0: ठीक है सर, ठीक है, आप भी अच्छे हैं सर, मैं भी अच्छा हूँ, और
1: जी
0: कार्यक्रम जुड़े हैं सर, आप सुनते हैं अपने पसंद के गीत सुन लीजिए,
1: जी जी
0: धन्यवाद सर।
1: ठीक है, सुनते हैं, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, आगे नमस्कार।
1: हाँ मुझे
0: आज्ञा आज्ञा, आपण को आमर कार्यक्रम के स्वागत। आज्ञा, पहला केन गीतटा सुनमा कहूँ तो? अच्छा
1: नहीं
0: अच्छा
1: आई।
0: हो, ठीक अच्छे। आज्ञा आपण को गीतटा सुनमा। आओ केन्ता अच्छा आज्ञा? आओ गोविंदतला रे रथ केन्ता हैला? भल हैला। अच्छा, आओ आज्ञा आपण काण करसन? अच्छा अच्छा, आओ आज्ञा बहुत दिन परे फोन कले। आज्ञा आज्ञा, हाँ ओडिशा बाहर, आज का तो गुजरात नो छत्तीसगढ़ नो फोन आई। हाँ आमर फोन टा से लॉटरी लगला बागीटा बोले आज आपन को लॉटरी लगला हो। आज्ञा आज्ञा, हो ठीक अच्छे, धन्यवाद। आज्ञा नमस्कार।

0: 讲。
1: हेलो
2: हेलो नमस्कार
1: आज्ञा नमस्कार हमर कार्यक्रम के आपन को स्वागत
2: इदा अपना ख्याल बन गार को बोल लिया बलांगी डिस्ट्रिक्ट रे
1: अच्छा
2: जितेंद्र ने बोल लिया
1: अच्छा आज्ञा केन गीता सुनमा कहुन त पहला
2: आज गुटे वर्षा रे फिल्म दे जाना गुटे देबे वर्षा हो दुआ गीता अछे बहुत छे
1: अच्छा अच्छा हो ठीक अछे मोर ऊपर यदि छाड़ले
2: गुटे पसंद रे आपन को जेंदा बोल लागबा
1: अच्छा बेताब फिल्म रो गुटे गीत टे सुनमा गर्जा है अच्छा ठीक अच्छे कान कर
2: कपड़ा
1: कपड़ा बुनसन मान के लगसी गोटे शाढ़ी बुनवार लगे अच्छा अच्छा हो ठीक अच्छे आज्ञा आपन होचन हमर सेस कलर
2: ताले
1: सुनमा आसुन ई गीतटा
2: ठीक अच्छे आज्ञा नमस्कार
1: नमस्कार आज्ञा नमस्कार।

0: ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସରଫିରୋଜି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए ये बात कही। इस दौरान सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के कार्यनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
2: देश के प्रथम गांव में बैठे हुए लोग देश की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक है, देश के अन्य भागों से उनका लगाव, निकटता कितनी है, इन सभी चीजों का अनुभव मेरे देश के नौजवानों को मिले, ये हमारा उद्देश्य था। और जो उत्साह पूरे देश के युवाओं में दिखा वो अद्भुत है। लगभग 3 लाख युवाओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और उनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: कैच दी रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर चल रही अवैध वसूली में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार और 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डी डे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 193 रन का लक्ष्य दिया है। हरारे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 192 रन बनाए। और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई तापस रंजन साहू। कारगिल विजय दिवस अवसर आज राष्ट्रपति द्रौपदी

0: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
1: हाँ।
0: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
2: क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको तुम्हें जे सर्वनाम क्यों नाम धरी डाकी भी तुमको तुम्हें जे सर्वनाम।
0: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
2: आलोक तुमको नपारे दिखाई तुम्हें जे देखाओ ताहरे। आलोक तुमको नपारे देखाई तुम्हें जे देखाओ ताहरे। तुम्हें जे बेढ़ी च
1: कोटी विश्वर
2: सबुरी भीतरे बाहरे तुम्हें जे बेढ़ी च
1: कोटी विश्वर
2: सबुरी भीतरे बाहरे।
0: ये हुआ पहला अंतरा।

0: अब दूसरा अंतरा।
1: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
1: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
1: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
1: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
1: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
1: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
1: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
1: फुला परी फुट,
2: फुला परी फुट,
1: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
1: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
1: फुला परी फुट,
2: फुला परी फुट,
1: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
1: केऊ नाम धरि,
2: केऊ नाम धरि,
1: डाकिबि तुमकु,
2: डाकिबि तुमकु,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
1: एक दुई, एक दुई, वो एक दुई, एक दुई, एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: केऊ नाम धरि डाकिबि तुमकु, 1 2 3 4।

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: सुनुले ओडिया भाषा रे गोष्ठी संगीत शिक्षा कार्यक्रम। आपण मैंने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र रु।
2: सुनंतु एक विशेष सूचना, आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र रे आवश्यक थिबा किसान उपभाषारे कार्यक्रम उपस्थापना पाई आग्रही युवक युवतींक ठारु दरखास्त आह्वान करा एथिपाई योग्यता हेला किसान साहित्य और संस्कृति संपर्क पर्याप्त ज्ञान थिबा आवश्यक, किसान उपभाषारे परिष्कार भावे शुद्ध उच्चारण करिपारुथिबे, प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीक शिक्षागत योग्यता स्नातक बा तदुर्ध होइथिबा आवश्यक, प्रार्थी अथवा प्रार्थिनीक कंठस्वर बेतार उपयोगी होइथिबो, प्रार्थी अबा प्रार्थिनीक बयस जून मास 16 तारीख 2026 सुद्धा 20-50 वर्ष मध्यरे होइथिबा आवश्यक, कंप्यूटर संपर्कित व्यवहारिक ज्ञान रखिथिबे, संबलपुर महानगर निगम अंचलर सीमा भितरे बसवास करुथिबे, आग्रही प्रार्थी अबा प्रार्थिनी सादा कागजरे निजर नाम ठिकणा शिक्षागत योग्यता बयस जाति फोन नंबर अबा मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर आदि विवरणी दे ईमेल आईडी sambalpur.co@gmail.com रे आवेदन करिपारिबे किंबा डाक जोगे पठाई पारिबे। आवेदन पत्र सहित गोटे पासपोर्ट साइजर रंगीन फोटो संयुक्त करि बयस तथा शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पाई उपयुक्त प्रमाणपत्रर फोटोकॉपी संयुक्त करिबे। निर्धारित फी बाबदकु प्रार्थी अबा प्रार्थिनीकु 225 टंका एवं शतकड़ा 18% जीएसटी सह मोट 266 टंका केवल एनईएफटी अबा ऑनलाइन बैंकिंग जोगे प्रसार भारती अकाउंट नंबर 1086175257 आईएफएससी कोड SBIN 00005 9 रे जमा करिबे। अकाउंट नंबर टी पुनि थरे कहि रखुछु 1086175257 आईएफएससी कोड SBIN 00005 9। आवेदन पत्र रे ट्रांजेक्शन नंबर ओ तारीख दर्शाइबे। डिमांड ड्राफ्ट नगद किंबा अन्य कौनसी आकार रे फी ग्रहणीय नुहे। आवेदन करिवार ठिकणा हेला कार्यक्रम मुख्य आकाशवाणी कचेरी रोड संबलपुर 768001। आवेदन करिवार शेष तारीख 2026 मसीहा अगस्त मासर 15 तारीख। मन रखंतु आवेदन करिवार शेष तारीख

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: मोर जने जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगे सारे किंतु से मानिबा को प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पुओ ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबा को लागिला तापरे कहले एबे लगेबा को ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: दा जुहार गो
1: जुहार बहन जुहान पुड़ा दिन देखली मोर बहन गेटा
0: हां केनता अच्छा दादा सब भल
1: काना कहले हो जे बहन छे चार्ज बढ़े मोर गुड़ केतरा खाई गला न पूरे
0: हैं तुम जलो दिन कोन कहू छ आज काय दिवस है जानी छ
1: काय दिवस बहन आज का
0: आज हो छे कारगिल विजय दिवस अमर सेनार सैनिक माने केते काना कर दउ छन और तुम केतरार कथा कहू छ
1: देन तुड़ा जलो जे नै कहमी गाय रे बहन

0: कहो ना जीते जन्म नहीं दो के ए माँ कहो ना जीते जन्म नहीं दो के कहो ना माँ कहो ना तब मुझे जेन आसी चाहे सेन के फेरी जाऊँ छे माँ
1: नहीं नहीं नहीं जा माँ नहीं जा नहीं जा
2: कोयरी ए कोयरी कहला कांदू छु जे किछ अघटन सपन देखलु का है

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति

0: और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्र रो।
3: आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण।

0: ଏ ଅଭିଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ଭୂଭାଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା। ଅପରେସନ୍ ବିଜୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବାୟୁସେନାର ଅଭିଯାନର ନାମ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ସଫେଦ ସାଗର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ସଳଖ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନରୁ ହେଉଥିବା ଗୁଳିବର୍ଷା ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଅସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସାହସ ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶିଖର ପୁନଃଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା। ଭାରତ କେବଳ ସାମରିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ 1999 ଜୁଲାଇ 26 ଭାରତୀୟ ସେନା ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରକୁ ପୁନଃ ଦଖଲ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 26 କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଜୟର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଅମୂଲ୍ୟ। ଦେଶର 527 ଜଣ ବୀର ଯବାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 1000ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଟୋଲୋଲିଂ, ଟାଇଗର ହିଲ୍, .4875, .5140 ଏବଂ ବାଟାଲିକ୍ ସେକ୍ଟରର ସଂଘର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଟୋଲୋଲିଂ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଦଖଲ କରିବାର ଅଭିଯାନ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 16,700 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। 1999 ଜୁଲାଇ 4 ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଥିଲା। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ବୀର ସୈନିକ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରସ୍କରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା। .5140 ଦଖଲ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ଥିଲା, ୟେ ଦିଲ୍ ମାଙ୍ଗେ ମୋର୍। ପରେ .4875 ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପରମବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବୀରଯୋଦ୍ଧା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ବୀରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବେ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରେନେଡିୟର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯାଦବ ଓ ରାଇଫଲ୍ମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଶତାଧିକ ସୈନିକ ମହାବୀର ଚକ୍ର, ବୀରଚକ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀରତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସମସ୍ତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ସାମରିକ ବିଜୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସାହସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଜାତୀୟ ଏକତାର ବିଜୟ। ଏହାକୁ ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ଆଜି ଦ୍ରାସ୍ସ୍ଥିତ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ସମର ସ୍ମାରକରେ ଦେଶବାସୀ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମାରକଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ବୀର ସୈନିକମାନେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଦେଶପ୍ରେମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ। ଏହା ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଠିନରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦେଶଭକ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଚିରଦିନ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ।
1: ଆଜ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ହେ, ଏ ଦିନ ହମେ ଗର୍ବ ସେ ଭର ଦେତା ହେ, ଏ ଦିନ ହମେ ଅପନେ ବୀର ଯବାନୋ କେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାହସ କି ୟାଦ ଦିଲାତା ହେ। କାର୍ଗିଲ କି ଉଚି ଉଚି ଚୋଟିଆ, କଠିନ ମୌସମ, ଦୁଶ୍ମନ କି ଚୁନୌତି, ହର ପରିସ୍ଥିତି ହମାରେ ସୈନିକୋ କେ ସାମନେ ଥି, ଲେକିନ ଉନକା ହୌସଲା ହର ଚୁନୌତି ସେ ବଡ଼ା ଥା। ଉନ୍ହୋନେ ମା ଭାରତୀ କି ରକ୍ଷା କେ ଲିଏ ଅପନା ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପିତ କର ଦିଆ। ଆଜ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପର ମୈ ସଭି ବୀର ଶହୀଦ ଔର ବୀର ସୈନିକୋ କୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନମନ କରତା ହୁଁ।
0: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଭାରତ କେବଳ ନିଜ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଗାଥାକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏହି ଭାବନାକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ସଲାମ।
1: ସାଥିଓ, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
0: मन की बात कार्यक्रमरे प्रधानमंत्री कहिछन्ति आज भारत निजर प्रतिरक्षा क्षमता को निरंतर सुदृढ़ करुछि। द्रासरे आयोजित कारगिल विजय दिवस समारोह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर शहीद मान श्रद्धांजलि अर्पण कर कारगिल वीर मान साहस दृढ़ संकल्प और देशभक्ति भारतीय सेना सह समग्र जाति प्रेरणार उत्स। से कहते शत्रुपक्षर उद्देश्य बदल भारतीय सशस्त्र बाहिनी जेकोसी आह्वान मुकबिला संपूर्ण प्रस्तुत। से कहते ऑपरेशन सिंदूर भारत दृढ़ सामरिक क्षमतार प्रतीक।
2: आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थी जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म फोर्सेस के एक जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया है। उस जनरल ने कहा था कि गोलियों के बौछार के बीच पहाड़ पर चढ़ते जाना, अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखना, फिर भी बिना रुके शिखर पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, ऐसा असाधारण शौर्य केवल भारतीय सैनिक ही दिखा सकता है। उस अमेरिकी जनरल ने आगे कहा था कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता है कि कारगिल में भारतीय जवानों ने क्या कर दिखाया था। 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई जहां तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूत ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। उनकी संख्या उसमें 546 है कि उस दौर में जब हमारे बलिदानियों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांव और शहरों में पहुंच रहे थे तो उस समय जो करुणा और गौरव का मिला जुला भाव भरा था वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। आज भी हमारी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगे। यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है, यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का, और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देख, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुःस्वप्नों का एक जवाब है। हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा।
0: कारगिल विजय दिवस हमको स्मरण कराए, देशर सीमा सुरक्षित रहिले ही आमर स्वाधीनता और गणतंत्र सुरक्षित रहिबो। आसंतु एक पवित्र अवसर रे आमे समस्ते कारगिल अमर वीरमानंकु श्रद्धार सह स्मरण करिबा, देशर एकता अखंडता एवं सार्वभौमत्वर सुरक्षा पाई सचेतन रहिबार संकल्प नेबा। अमर शहीद मानंकु आमर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
3: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
4: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है, कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
7: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
8: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वॉश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
9: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defense Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event. And Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
10: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
4: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है।
11: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैड कंटिन्यूअस मीटिंग टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
4: बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूंगा।
10: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
7: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है देश पहले बाकी सारी सुविधाएं बाद में ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करेंगे
10: Kargil Vijay Diwas is being observed today. Entire nation salutes the indomitable courage and supreme sacrifice of our soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil War martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
5: आज कारगिल विजय दिवस है ये दिन हमें गर्व से भर देता है ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां कठिन मौसम दुश्मन की चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं
10: So main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defence Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
6: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
12: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर

0: रानी गुंडीचा
1: महाराज
0: कौन हुई थी रानी सदा सर्वदा तुम्हारा हस हस चंद्रमुखटी आज विरस दिशुची जे कथा कौन
1: सुनिले आम आराध्य देवता भगवान विष्णु को संधाने जाइथिबा चार माने पड़े विफल ही फिरी आछंती
0: हां रानी उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम दिगरे प्रभुंकर कोनोसी संधान न पाई से माने फेरी आछंती
1: एओ भगिनो मनस्कामना तेबे कोन पूर्ण होबनी स्वामी मनरे कल्पना करथिली मंदिर तोळेबी सेथि विष्णु मूर्ति प्रतिष्ठा करबी सारा जीवन तांकर सेवा पूजा करी तांकर श्री चरण रे निज को समर्पण कर देबी किंतु किंतु ये कोन हैला प्रभु कोन मोर डाको सुनिबे नै स्वामी
0: तुमे अधर्ज हो नै रानी गुंडीचा प्रभु को ठाव करिया पाए मोर प्रचेष्टा एबे मध्य संपूर्ण होई नाही पूर्व दिगर अनुसंधान ए पर्यंत बाकी अछि रानी
1: पूर्व दिगर अनुसंधान
0: हां रानी जन तीर्थयात्री सन्यासी ठार सुनी हम आराध्य देवता भगवान श्री विष्णु पूर्व खंड अवस्थित पवित्र उत्कल भूमि रे विराजित होती
1: सतरे सन्यासी आउ कौन कहते स्वामी
0: तथ्य रु एति अवगत हेली उत्कल भूमि दक्षिण दिगरे महोदधि तीर पार्श्वरे पुरुषोत्तम क्षेत्र रही तहारी मध्य नीलकंदर नामक घंच पहाड़ अरण्य भितर प्रभु पूजा पाउछंती नीलमाधव रूपरे
1: नीलमाधव रूपरे तुम्हें तले आउ विलंब कर नहीं महाराज उत्कल राज्य को दूत पठे प्रभु नीलमाधव को आनिया पे शीघ्र व्यवस्था कर
0: तुम्हें कहिबा आगरु से व्यवस्था मु करी सारी छिराणी

0: ललिता ललिता
1: कौन सर
0: ये गाधुआ पेड़ी चंचल सर पानी नहीं गले रोसे आज तोर कौन है कि झरणा पानी उठा को मोटे कौन मन करुन सतिले सारिया आज चहला पानी गाधवा को मत कहीं भारी भल लगुच मन हूँ दिन सारा पानी आज मुझ खेलती आहरती कि हाँ मन खुशी कहीं पहरी था आउ दिन कईटा कैरे तो सबरपल्ली माय तुटे चलीजु तेणु जिते पहरव को कौन कहलु
1: कौन कहलु सारिया ए सबरपल्ली माय तुटे मुझे आलो कड़े
0: आ जान नमी आम सबर राजा विश्वास को गोटे ज्योतिष पूरा कही तू कड़े उच्चकूल बोजु
1: सत्य रे बापू मोप एत बड़ स्वप्न देखुचे
0: कहीं रूप गुण से तो कौन कि जितिया शबर हेल्ले कौन है मो जिते हेल्ले रजा झुआ तो हाँ हाउ से कथा है दिन हम कलश्रे पा नहीं चलु बेगी घर तेने के पार्टी पड़ी
1: हाउ हाउ

0: ए पानी जितिक शीतल सेतिक मधुर भगवान तुम मंगल करंतु
1: हौ हौ भगवान केबे जे मंगल करिवे एबे पिंडा उपर मृग चले पारि देछि आपण बसंतु आज आपण आम घरे कुणिया
0: कुणिया तुम घरे ना ना
1: काहे की गरीब घरे कुणिया हबा को पसंद करंति नहीं ना
0: ना ना से कथा न ललिता मो भाबुतिले कोन की
1: कोन कसे
0: कथा कोन की मु विदेशी पुणि अपरिचित एकुटिया थिबा कोनसी रमणी घरे
1: ओ घरे की पुरुष नथिबार कुणिया हबा को डरी जाउचेंदी ना ना ना आदु डरंतु नहीं गोसी मु सबर राजा विश्वबसुंगर कन्या बापू माने गले एक हिन फेरथिबा
2: ए ललिता
1: हे
2: आलो मा ललिता
1: ए तो बापू आसलेनी
2: के आसी की मा ए सकाळ सकाळ ए गरीब कुडिया रे ब्राह्मण गोसेंकर पाद पडिची हमर तो बडो भाग्य ए दंडवत गोसे दंडवत
0: अरे अरे ये कोन करछ सबर राजा जेते हेले तुमे राजा पुनी वयस्क तणु तुमे बर नमस्य
1: बुझिले बापू तू नथिलु बोले गोसे एति रहिबा को मट्टे राजी होनथिले
2: तू तांको आदर रत्न करी बसिबा को कहि नथिबो सेइथि पई से रहिबा को राजी हे नथिबे ना
1: मु जाने परे बापू कथाटा किछि न जाने तू आगे मोर उपर दोष देबो पचेलु तांको पिंडा उपर मृग छले पारि दे
2: ओहो ए तू तांको पाद धोई दे आसन रे बसा मु ए सांगे सांगे जंगल रु किछि पाचिला फळ नै आसुति
1: हे आउ बापू

0: ललिता।
1: अरे मा ललिता।
2: कौन बापू?
1: ये विद्यापति गोसाई देखा जाउ नाती जे?
2: सी तो आसले दिनु खाली बणा पहाड़ और झरणा बुली देखु चंदी जाईथिबे सही अड़े।
1: ए मु कोन कहुथिलि के मा ये गोसाई टी केमिति का मणिस
2: जेमिति पंडित सेम डरकुला।
1: हे डरकुला आलु तू केमिति जानलु?
2: कौन हैले बापू कहना से कथा सुनिले ना हसी हसी तो पेट धरे जे जीवा।
1: आलो कहो कहलु कहलु देखी कोन?
2: ओहो बापू तू आके बसले सिना कहिबे। सुन ए चटपारी दउची एठी ब।
1: हो हो बसले
2: चाहिलु बापू। काली बेळ बुडे गोसई के संगे रे नै जाईथिले झरकुळ को पहाड़ ऊपर सेई जो सरु झरटा तळु को गड़ी आछी सेईठी तांको ठिया करी मु बाहरली कळसी नै पानी आनिबा को।
1: अच्छा तापरे
2: तापरे तापरे ना तापरे ना

0: ना ना ललिता मते एठे एकुटी छाड़ी तमे जाओ नहीं मते भारी भय लगुछि
1: राज्य रे दूत होई पण भय काहा को भय
0: एई एई पहाड़ ए जंगल आउ तमे सब हाथ रे धनु तीर
1: आउ
0: काहा को पाखो को आसले सिना कहबे
1: काहे की सेठी को ना
0: पाखो को आसले तम कान रे चुप चुप कहबे आस पाखो को आस
1: नाही गो नाही
0: काहे की
1: तमे कोन जानि ना की गोसे आम कुल रे अजणा अचिना मनुष्य पाखो तिल्ला माने जीवा को मन्ना मु केमते जीबे जे
0: सतरे मु ताले अचिना अजणा ना आउ मते जे एतरिन जे तम घर के खाइबाक देल स्नेह आदर देखल केते केते भल कथा कहल ठीक अछि मु जाउछि
1: ए ए ए गोसाई जाउनी जाउनी तेरे के मोटे जाउनी भारी जंगल तीखा पहाड़ पहाड़ तले बाघ छकी बसतिबो मो कथा मान मान

0: नीलकंदर
1: को बापू छड़ा अन्य कहारी पक्षे जीवा संभव नहि से कति गोपन अजना स्थान
0: बुझलि राजा इंद्रद्युम्न आउ राणी गुंडीचा आशा तेबे चिरदिन से आशा रही छ मो कर्तव्य मु केबे हेले पालन करे को समर्थ भी नहि
1: तमे मन दुख करे नहि स्वामी मो बापू को कहि तमे पे निश्चय किछु उपाय करबी एई त बापू आसिलानी
2: कोन हेइ छि रे ललिता अरे ये दी जन जाक खूब गंभीर जाना पड़छ जे
1: तो ज्वाई रे एकजी से नीलमाधव को दर्शन करिवे
2: कोन कहलो ये ज्ञापति दर्शन करबो नीलमाधव को नीलमाधव को कथा से किमति जानले तू तं कहछो कह तू तं कहछो
1: आ बापू मो कहिसि
2: जानी दे हां जी जानी दे शून्य वाणी निश्चय सत पड़िबो
0: शून्य वाणी
1: की शून्य वाणी बापू
2: जो दिन अवंती राजा इंद्रद्युम्न लोक आसी नीलमाधव को दर्शन करिबो नीलमाधव नीलकंदर छाड़ी चली जीव मु जानी पारुथी शबर देवता नीलमाधव एबे बणर फलमूल तेज्या करी राजसिक भोग जाखिबा पई मन बळैलानी से आउ एठे रहिबो नै रे मा से आउ एठे रहिबो नै
1: बापू मोर भोलै जी बापू मोर भोलै जी मते तो शास्ति दे बापू शास्ति दे
2: खांदना रे मा खांदना जहां नीलमाधव रे इच्छा तहां ही खटिबो ता इच्छा हेले से रहिबो इच्छा हेले चली जिबो तू आओ मन दुख कर ना तू आओ मन दुख कर ना विद्यापति को काले सकाळे नै नीलमाधव को दर्शन करी आरिफी
1: बापू
0: राजा विश्वबसु
2: हां विद्यापति तमे नीलमाधव को निश्चय दर्शन करिबो किंतु
0: किंतु
2: किंतु गोटे शर्त रे
0: शर्त
2: मु तुमको नहीं नीलमाधव को देखे आनी हेले नीलकंदर जीवा बाटटी को मु देखेबी नहीं
0: ता अर्थ
2: मु तुम आखिरे अंध पुटी बांधी नीलकंदर को नहीं जीवि आ दिय दर्शन सरले पुणी से ही परि आनी एठारे छाड़ी देवि कह मोरे शर्त रे तमे राजी तो
0: मु राजी सबर राजा मु राजी
2: बेश ताहले तुम्हें जीवा

0: सोई पड़ला ना कौन?
1: ना, निद हो नहीं।
0: तम इच्छा पूर्ण करिबा को बापू ते राजी हला। आउ पुनी कौन भाबुचे जे?
1: भाबुची, जने संदेह आ अविश्वासी लोक परि नीलमाधव को दर्शन न करिबा परम मो पखरे भलो हो।
0: काहे की?
1: एकुटिया जाई तांकु जेतबेले मनपुरि देखि परिबि नहीं।
0: छी, तमको मोरेणा। तमे बापू कथा को मट्टे धरिबा नहीं। नीलमाधव तांको प्राणटु भली अधिक प्रिय। मु तम कथा दउची। नीलमाधव को तमे जेमिति एकुटिया जाई दर्शन करि परिबो, मु तार उपाय करिबि।
1: उपाय? की उपाय करिबो?
0: तमे खाली नीलकंदर को गल्ला परे अंटीरे किछि सोरिस बांधि नै जिवो। आ बापू अजनतरे कौशल करि से सोरिस को बाट जाक बुनी बुनी जिवो। किछि दिन परे से बुणा सोरिस गच्छ गच्छिबो। आ से गच्छ को चिन्ह चिन्ह तमे एकुटिया जाई नीलकंदर पहुँचि परिबो।
1: वाह चमत्कार उपाय। तुम्हारे बुद्धि को मु प्रशंसा लुक रही पर नुरिता। तमे तमे तमे प्रकृति रे बुद्धिमती आ चतुरी।
0: ताहले मो कथा मानि एथर को सुन्ना पिलाटी परी सोई पड़।
1: बेस राजा विश्वव सुनंदिनी रानी ललितांकर आदेश मम शिरोधार्य।

0: महाराज
1: कुहराणी
0: विद्यापति तो एपर्यंत काहीकि फेरले नाही तांका यात्रा पथरे कोनसी विघ्न घटी नाही ताउ
1: ना ना सेपरी काहीकि भाऊ चराणी से जेतेबेले देवकार्य रे जाईछंती तुमे देखिबो से निश्चय कृत कार्य ही फेरिबे
2: अवंति महाराजंकर जय हो
1: के विद्यापति तुमे आसीछ विद्यापति
0: मेरा माधवकर संधान तुमे पाइलो विद्यापति
1: कह विद्यापति उत्कल तुमे की संवाद नहीं फेरिछ
3: संवाद अति शुभ महाराज
0: शुभ
3: देखी आसिली निघंच अरण्य नीलकंदर रे विश्ववसुधाम रे जने सबर राजा नीलमाधव को बणर फलमूल खुआई पूजा करछंती अपूर्व अपूर्व से शोभा महावट वृक्ष तले सुशोभित वेदी उपरे प्रभु नीलमाधव चतुर्धा मूर्ति होई पूजा पाउछंती
1: विद्यापति
3: कर्पूर चंदन वास रे सारा अरण्य महकी उठुची माधवंकर से हस हस श्रीमुख शोभार पटांतर नाही महाराज से दृश्य मन पड़े देहर मोर रोमांच जात हो महाराज से शोभा अपूर्व अपूर्व शोभा महाराज
1: धन्य तुम्हें विद्यापति तुम्हें धन्य प्रभु को तुम्हें स्वचक्षुर दर्शन करी कोटि तीर्थ दर्शन रो पुण्य अर्जन करिछ तुम्हें धन्य हिच विद्यापति तुम्हें धन्य
0: ताहले आउ विलंब करनी महाराज प्रभु नीलमाधव को ससमाने अणई तांको यही थारे प्रतिष्ठा करियोरे व्यवस्था करो
1: तुम्हारी कथा हेबो रानी काली प्रत्युषरे पात्र मंत्री आउ सैन्य सामंतक गहन रे तुम्हें मु आउ विद्यापति नीलमाधव को आनिया पाई उत्कल नीलकंदर को यात्रा करिबा
4: मोर खण एते सौभाग्य हेबो प्रभु तुम्हारा दर्शन लाभ करिबी प्रभु

0: विद्यापति
1: आदेश करंतु अवंती राजा
0: एकांतकित पहाड़ जंगल भितरे आमे उकेति बाट जिबा
1: लक्ष्य स्थल रे आमे आसी पहुंचि गलेनि महाराज एई एई सिनेळकंदर
0: एई सिनेळकंदर तबे नीलमाधव कांति विद्यापति
2: कुह विद्यापति कोठी अछंती प्रभु नीलमाधव
0: विद्यापति तुमे नीळ काहे कि
1: निजो आखी को विश्वास करि परुनि अवंती राजा एई बटवृक्ष तले सुशोभित वेदी उपरे प्रभु नीलमाधव पूजा पाउथिले वेदी वेदी जे शून्य पड़िछि महाराज
2: ए वेदी शून्य पड़िछि प्रभु नीलमाधव तेबे कोन नहांती
0: नीलमाधव ते गले पड़े अंतधन हे गले
1: कोन घटित हे परे मु किछ भाबी परु नहि महाराज
3: कहांती मो नीलमाधव की रंगु नहि गले हे विद्यापति तुम्हें इठी तुम्हें इठी वाइस लगे मिची आओ आओ ये मैंने सब किए
0: ये पागल विद्यापति
1: महाराज यही हो चंदी नीलमाधव को पूजा को सबोरा राजा विश्वावसु
0: है राजा विश्वावसु राजा विश्वावसु कहाँ थी तुम नीलमाधव
3: कहाँ थी तुम्हें सब मो नीलमाधव को चोरी कर दे चो तुम्हें सब केंद्र हेले भलो लोग नो तुम्हें समस्त चोर तमें सब नीलमाधव को चोरी नहीं गल सब चोरी नहीं गल
0: अवधान समर राज पागल पूरी मन इच्छा कौन सब कह जाऊ
3: कहबी नहीं डरबी पचार तुम ये विद्यापति की जो दिन से नीलमाधव को दर्शन कला तारी पर दिन ठू नीलमाधव ये आहती भलरे भलरे मानि जाओ मो नीलमाधव को कौटे रखी छ ताहले मुँ आज यही रक्तर नदी बुहाई देवी और तुम समस्त ये वेदी उपर बढ़ी चढ़ी देवी हाँ बढ़ी चढ़ी देवी
0: कौन कहिले नराधम बदबर किरात तो एते दुर्स्पर्ध तू अवंती राजेंद्र दुम्न को बढ़ी चढ़ी देव मूर्ख जानी नहु मोर शक्ति के अथरे ये पागल किरात को बंद करी कारागार को नहीं जा
3: मते तो बंद कर कारागर को नहीं जा ओ क्या ओ पिया मारी दे ले मो नील माधव को तो मते फेरे ही दे मते तो फेरे ही दे राजा इंद्रदेवन मो नील माधव को मते फेरे ही दे मु सत्य कहती राजा मो नील माधव को न पाइले मु आउ बंचिबे नहीं नील माधव जे मो प्राण उठु भी अधिक
0: तुम्हारे प्रलाप सुनियो कु मु आसी नहीं किरात राजा ये सबर को ही मुहूर्त बंद करो हे मोर आदेश
4: शांत हो राजा इंद्रद्युम्न शांत हो तुम पर विश्वास मध्य मोर परम भक्त ताकु बंदी कले अमंगल तुमर सुनिश्चित सुन राजा इंद्रद्युम्न सुन राजा विश्वासु ए नीलकंदर रे मोर लीला समाप्त होईछि मु सो इच्छा रे इठारु अंतर्ध्यान होईछि हेणिके मु पुरुषोत्तम क्षेत्र रे दारु ब्रह्म रूपरे पूजा पाइबि
5: प्रभु प्रभु
4: राजा इंद्रद्युम्न
5: प्रभु
4: रानी गुंडीचा
2: प्रभु
4: तुम दुहिंकर भक्ति डोरी रे मु चिरकाल बंधा तुम मनस्कामना मु अवश्य पूर्ण करिबि तेणु तुम्हें एठु फेरी जाई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अवस्थान करी नीलकंठेश्वर बेढ़ एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ समापन कले मु दारु ब्रह्म रूप से भासी भासी जाई महोदधीर बांकी मोहन ठारे प्रकटित हेबि तुम्हें सेठारे मो पाई देउळ निर्माण करी उक्त दारु रे दियो गढ़ाई पूजा अर्चना कले मु मोर लीला पूर्णी आरंभ करिबि
3: कौन कहिलो प्रभु नीलमाधव ये गरीब सबर पूजा अर्घ्य कंदमूल भोग तुम पाई कौन यथेष्ट मत शेष सर्वहरा कर ये नीलकंदर को शून्य कर चाली कल हाँ जीव ना कहीं छार सबर टाए मु कौन बाद तुमको आ संतुष्ट करुझल ना मो मनर कथा ये विश्वावसु तो केवे तुमको दबारे किसी हेड़ा कर नाला कि केवे तो किसी मागि नाला तुमको जी गोटाए मुहूर्त तुमको आखि छड़ा कै ना ताकू शेष तुमको दर्शन करवा करुणु भी वंचित कल प्रभु कह प्रभु नीलमाधव केमती बंचब से तुम पारा मु जीवन पण करी कौन यही आखिवा शून्य नील कंदर आून्य जीवन टा को नहीं कहीं बंची तमें तमें मत छाड़ी चलीगल पर करदल तेब शास्ति मु तुमको देवी प्रभु देवी मो निज को पथर मुंड को छेती छेती ये जीवन मु हर देवी प्रभु हाँ हाँ ये जीवन मु हर देवी
4: अभिमान कर नहीं भक्त विश्व बसु के कहला तुम्हें सर्वहरा तुम्हें जी मोर एकांत निजर विश्व बसु छड़ा नील माधवर अस्तित्व कहीं मन दुख कर नहीं भक्त विश्व बसु नील कन्नर मो अंतर्ध्यान होई सत किंतु तुम हृदय रे मुझे चीर जाग्रत
1: प्रभु
4: किछि दिन परे मु पूर्णी आविर्भूत हेबी नुआ कलेबर ने से कलेबर भितरे मु थिबी तुमर से नील माधव तुमर समस्त पूजा अर्चना केबे मिथ्या जीवनी भक्त विश्व बसु तुमर मोर संपर्क खूब निविड़ अविच्छेद्य खुशी मनरे जा विश्व बसु जा जथा समय रे मु तुमको पूर्णी स्मरण करी
3: प्रभु प्रभु प्रभु नील माधव मते मते तुम्हें पूर्णी स्मरण करिब प्रभु मु ताले भाग्यहीन नुहे मु ताले सर्वदा नुहे आज कि आनंद मोर कि शांति प्रभु नील माधव प्रभु नील माधव प्रभु नील
4: धन्य धन्य भक्त विश्वासु धन्य तुम्हें अवंती राजेन्द्र दुम्नर राज मुकुट आज तुम्हारी पाद तले नई जाऊे तुम्हें धन्य विश्वासु धन्य तुम्हें प्रभु नीलमाधव इच्छा पूर्ण हो

0: कौन है ची? कौन है ची रानी गुंडीचा? तुम्हें खुद विव्रत जाना पड़ता जे कथा कौन?
1: से बुढ़ा बुढ़े गंभीर भितर रही बरा आज की 14 दिन हो गला हेले मूर्ति गढ़ा व्यवहार शब्द किछि तो जाना पड़ू नै देउल कबटे कान पारी सुनिले किछि भी सुनो जाऊ नै
0: मत भी तो आश्चर्य लागु छी रानी 21 दिन पूर्ण हेबा को आहुरी 7 दिन बाकी से बढ़ेर सत्य कथा भाबिबो बेळकु
1: ए पाखर ता दुर्बल शरीर कथा भाबिला बेळकु ओ मनु काहे कि पाप छुची स्वामी शिशु को आमे पुण्य अर्जन करिबा परिवर्ते नरहत्या पापर भागी हो बनाई तो
0: ना मु किंतु निरुपाय रानी निरुपाय बुढ़ा महाराण को सत्य ना ना असंभव मु पारी बिनी रानी मु पारी बिनी
1: ताहले गंभीर द्वारा खोलिबा को आदेश मु दउची
0: ना ना ना रानी ना एक कथा तुम्हें करो ना
1: जा रखी आदेश पालन करो
0: रानी
1: जाओ तुम्हें
0: रानी
1: रखी
0: ना रानी
1: रखी
0: सुन
1: जा तुम्हें
0: सुन जा रानी सुन जा रानी सुन जा रानी अब देखो ना

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ମହମ୍ମଦ ଜୁବୈର। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की

0: समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल है। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बधाई दी है। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। हरारे में भारत ने 193 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर याछिनीर मुख्य खबर संगे मुई तर्पण कुमार प्रधान। देशर सांस्कृतिक परंपरा थी सामूहिक भागीदारी सबुबेले प्रमुख शक्ति रहीआसीचे कहले प्रधानमंत्री। विकसित भाइब्रेंट भिलेज कार्यक्रम थी युववर्गंकु देले आह्वान। कारगिल दिवस थी भारतीय जवानमानकर असाधारण साहस आउ वीरत्वके सुरता करिकरि कहले प्रधानमंत्री। आकाशवाणीर मन की बात कार्यक्रम थी भिन्न भिन्न क्षेत्र थी भारतर सफलता के कले प्रशंसा। कैच द रेन अभियान थी पानीर उत्सर संरक्षण थी भुवनेश्वर सफलता के कले प्रशंसा। देश लागि सबुनु बड़ बलिदान देथिबार शहीद मानकु कारगिल विजय दिवस अवसर श्रद्धांजलि जलाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश मातृकार सुरक्षा लागि कारगिल युद्ध थी बलिदान देथिबार वीर जवानमानकु श्रद्धांजलि जनाले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। श्रीक्षेत्र पुरीनु आज आषाढ़ मासर उज्जवल पक्षर द्वादशी तिथि सरीछे। महापुरुषमानकर अधरपणा नीति राति महापुरुषमानकर रात्रपहुड़ नीति सांगे आयबाकेल हबा रथजात्रार शेष परब नीलाद्री विजे। आयबाकेल सकाल 8 बजेनु यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वरनु साधारण लुक्कर भिन भिन अभियोगर शुणाणी करबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विश्व जूनियर स्क्वाश प्रतियोगितार स्वर्ण पदक हासिल करिथिबार अनाहत सिंह को अभिनंदन जनाले प्रधानमंत्री। पहला भारतीय स्क्वाश खेलाड़ी भावे विश्व जूनियर चैंपियनशिप टाइटल कले हासिल। ग्लासगो राज्यगोष्ठी क्रीड़ा थी भारत के मिल्ला आ गोटे रौप्य पदक। पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग थी पाइले भार उत्तोलक ऋषिकांत सिंह। महिला 48 किलोग्राम वर्ग थी स्वर्ण पदक जीतले भार उत्तोलक मीराबाई चानू। अभिनंदन जनाले प्रधानमंत्री। भारत और जिम्बाब्वे भितर चलिथिबार T20 क्रिकेट मैच सीरीज थी आज 35 रन थी जीतला भारत। तीनटिकिया T20 सीरीज थी भारत 3-0 थी जीतला सीरीज। वैभव सूर्यवंशी पाइले प्लेयर अफ दि मैच आउ प्लेयर अफ दि सीरीज पुरस्कार। आब 24 घंटा भितर संबलपुर देवगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ सहित 10 जिला के सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। आज मुख्य खबर इन शेष है। जुहार।
1: आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करिबा पूर्वर शुणंतु आगामीकाली प्रसारित होबाकु थिबा केतेक कार्यक्रम संपर्क रे सूचना। आगामीकाली सकाळ 6:30 रे शुणिबे आजिरो भावना उपस्थापना करिबे शिवानी लाल। स्वास्थ्य सूचना शुणिबे सकाळ 7:10 रे एथिरे मलेरियार चिन्हट ओ चिकित्सा ए संपर्क रे कहिबे डाक्टर अम्बरीश पंडा। परिवेश सूचना सकाळ 7:30 जलवायु परिवर्तन ओ पक्षीकूल ए संपर्क में कहे डॉक्टर समापिका दास। सुगम संगीतर विशेष कार्यक्रम सुरंजनी प्रचार करिबु सकाळ 7:35